0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Soundcheck. Sony FM. The studio time.
4: It's 7 AM. Behind Kusad Roger.
5: टाइम चेक को साथ न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंबू

0: मैं चला जाए वो उसमें क्वारेंटाइन अथवा आइसोलेशन में रखिए तो सर उन लोगों बाटो उन लोगों ने चीज पॉजिटिव देखी तो सही नहीं है ना ऐसे समझते हैं उन लोगों फॉलो कर रहे हैं सर बट इसे तीन मैन से तो वाला पर अथवा जो क्रूज शिप समय सामान्य मैन से हैं अथवा उन लोगों ने चाहे प्लेन में चाहे वसार संख्या को दिए अब समग्र देश अथवा शहर भन्ना भाई कारण उन्नी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सही प्रोटोकल अनुसार राखी रखने देखि फलो कर मोनिटर कर देखि तेरा यदि मानने कोई शहर में आग्रह भ साँच्चै मान्छेहरु चाहिँ धेरैलाई अब संक्रमण भएको देखिन थाल्यो भने चाहिँ हो तपाईँले भने जस्तो त्यहाँबाट अब सबैले चाहिँ शङ्काको घेरामा राख्नुपर्छ
1: अहिले तत्काल चाहिँ त्यो प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छैन कुन कुन देशमा चाहिँ अब यो जोखिम चाहिँ रहेको छ र त्यहाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ के देखिन्छ

0: world's number one tire brand.
1: Classic Deco 16th anniversary offer. Dasima Payo, Kati Mapayo. Budget for package for Paike Rosaiko. Abo Internet TV, the Wi Fi 6 router, Bunny, Kati May Pinesa. Classic Deco Kuni Bunny Plan, Karima, Karekhata. Teams and Arai, Teen Mahina Internet Bonus. Ramasi Kate and Arai, Yu Barahatako Internet Bonus. Samparta 980-100-4477. Classic Tech. Dasima Payo, Kati Mapayo.
2: के तपाईं झाड, कम्मर, घुरा, गर्दन दुख्ने समस्या, युरिक एसिड, बाथ रोग, नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ?
3: यस्ता समस्याको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आदेश सम्झनुहोस्।
2: हाम्रा सेवाहरू:
3: ओपीडी सेवा,
2: विशेषज्ञ ओपीडी सेवा,
3: निशुल्क औषधि वितरण,
2: सशुल्क फार्मेसी सेवा,
3: फिजियोथेरापी सेवा,
2: अकुपंचर सेवा,
3: योग परामर्श सेवा,
2: क्रियाकल्प सेवा,
3: पूर्व कर्म पंचकर्म सेवा,
2: क्षार सूत्र सेवा,
3: जलौका सेवा,
2: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू,
3: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म।
2: विस्तृत जानकारीका लागि
3: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर कैरीगाउँ काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-4110-6690 98514-2463।

अरे टाटा जी टाटा गाड़ी को मापदंड अनुसार उच्च गुणस्तर को बनाए लामो समय समय टिक्स गाड़ी को कार्यक्षमता बढ़ाद साथ ही टाटा जी पार्ट्स खरीद कर 2008-2009 और 2008-2009 कंफी कोड भाई को मात्र खरीद करना जानकारी कराई।

0: इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभालाई पहचान करी उजागर गर्न मदद गर्दै आएको छ। न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुन वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीपाती संपर्क नंबर 9813623882 9813623287
1: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मात्य दूधकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मात्य दूधकोशी को समृद्धि मात्य दूधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु को सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बुधवार साँझ 7:30 देखि 8 बजे समय सुरु एफएम 101.2 मेगाहर्ज अनलाइन र सुरु एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ। कहाँ पुग्यो कहाँ पुगेन जनप्रतिनिधिको नजर विनियोजित बजेट को काम र प्रभावकारिता नागरिक को गुनासो र सुनवाई समग्र स्थानीय तह को विकास र सिद्धि नेता सोलन गाउँपालिका सोलुखुम्बु को सहकार्य में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो नेता सोलन हरेक महीना को पहिलो सोमवार र अन्तिम सोमवार साँझ 7:30 देखि 8 बजे समय सुरु एफएम 101.2 मेगाहर्ज www सुरु एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ।
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन एफएम। सुन एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मूल क्षेत्रमा
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उम्मीद समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्चल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सपेन्स को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880222 र 9842880300
0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मूल क्षेत्रमा
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उम्मीद समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्चल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सपेन्स को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880222 र 9842880300 Субтитры создавал DimaTorzok

0: Rádio Solu é tempo.
1: Solu FM 101.2 MHz. उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: संचय सोनिया फैन स्टूडियो टाइम
3: अल्पन मध्यान को बारह बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका पांच सोलु खुंबू

विगत 39 वर्ष देखि संचालनरत नेपालको पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कंपनी नेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नासिम पार्क काठमांडू। सुधा कुरा प्रश्न विचार।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ भरपर्दो
3: अफ रोड का उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भैर
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का अति उपयोगी ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्तल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
3: ओखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाई
2: संपर्क नंबर 0 37 590 222 98 52 88 0 222 98 42 80 30 00।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्तल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842803000

0: voice to your heart. Zulu FM 101.2 MHz.
1: कार्यक्रम आपकी पाखा अपनी भाका को साधना सागर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर एंड मोटरसाइकिल ओक साथ सोनू दुधकुंज नगर पालिका 0.3

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sunshine,
2: Surya Film, Studio Time.
1: It's 4 p.m.
2: I'm Jake Kusatma, New Star Digital Color Lab, Tata Dwaramai Offset Press, Solu Dutu Nagarpalika 5, Solu Kumbu.

0: एंड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर कर मदद करते आक न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुन वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीपाती संपर्क नंबर 9803623882 9803623287
1: गुरु आज मेरो जन्मदिन हो याद तो
2: संसार की सबैभन्दा राम्रो

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: सोनू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संक्षेप सोनू एफएम स्टूडियो टाइम
2: 6 PM 6:30
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोनू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभालाई पहचान करी उजागर करना मदद करते आएको छ। न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासु वर्ल्ड कॉलेज साधन सूचीपाती संपर्क नंबर 9803-62382 9803-62387।
1: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मत्स्य जुट कोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मत्स्य जुट कोशी को समृद्धि मत्स्य जुट कोशी गांवपालिका सोनकुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बिहार सांसो 7:30 देखि 8 बजे समय सुनो एफएम 101.2 MHz अनलाइन सुनो एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली सिनेमा नयाँ सैन्य भूमिका सम्बन्धी सूचना नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेको सैन्य पदको दरखास्त आह्वान गरिएको हुँदा आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकतालाई नयाँ भर्नका लागि आह्वान गरिन्छ। स्थानीय दुर्गापक्ष फोन ओखुढुङ्गा ब्यारेज ओखुढुङ्गा दरखास्तको आह्वान मिति यही पैसा 18 गतेदेखि जेठ 16 गतेसम्म दोब्बर दोस्रो पुसाइ मिति जेठ 17 गतेदेखि जेठ 23 गतेसम्म थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 0-35-35-5576 साथ ही भर्ना सम्बन्धी थप जानकारी को लागी यही पुस्तक 18 गते को गोर्खापत्र दैनिक र नेपाली सेनाको वेबसाइट www.nepalarmy.in मा लगइन गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Studio time.
0: It's 7 p.m. Start to go start with.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

0: Saiu rádio em sono, é vergonha.
1: Sonu FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
2: Sanchit. Sonu FM. Studio time.
3: It's 8 p.m. रातको 8 बजे.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोनू दुतुन नगर पालिका 500 कुम्बू
3: मय किसान पाई प्रोडक्ट्स पालेको हो
2: राष्ट्र को शान किसान
3: अ कम्प्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस अहिले तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुन्दै हुनुहुन्छ अब प्रस्तुत छ आज बिहान 8 बजे प्रसारण भएको कार्यक्रम बदलेर नेपालको पुनः प्रसारण